रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर

0: आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।
1: छत पक्षियां रंगा दी तुम बरसाती,
2: सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया,
3: दोनों को ही चाप

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
0: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और

0: भी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshi Deepa only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर एयर फ्री म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा, तभी तो रेडियो चुनार सही है मेरे यार। अभी हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काए, अपनी बात हम तक पहुंचाए। जी हाँ, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर जाए, फॉलो शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाए। याद रखिए, रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट्स में प्यार जरूर दें। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। शो का हिस्सा बनने के लिए 8999904 इज द नंबर। यह गाना ही ऐसा है कि इंसान अपने लव्स के अपनी हार्ट बीट स्किप कर देता है। सो आई एम पंपिंग अप द वॉल्यूम, स्टे टू द हार्डेस्ट फ्रीक्वेंसी, दरगाते रहो।

0: Kommer där, ja.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: Radio Chennai 90.4 FM, the hottest frequency. Mazdar show. What's up show, my brother. Aaj ka weather.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: जी हाँ, आज भी मौसम बादलाना होने वाला है. इट्स पार्टली क्लाउडी फॉर टुडे, बट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 28 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम.
1: वेदर अपडेट.
2: बादलों के साथ साथ गरज बरस की भी संभावना. अभी की बात करें तो यूवी इंडेक्स स्ट्रांग है, दैट मींस बॉस सनस्क्रीन इज मैंडेटरी. उसके अलावा ह्यूमिडिटी 59%, विंड स्पीड 6 किलोमीटर, विजिबिलिटी 14 किलोमीटर. आज का सनराइज हुआ 5:19 पर, आज का सनसेट होगा 7:45 पर. रेडियो चना 90.4 एफएम बराबर मस्तार शो. व्हाट्स अप, एंजॉय कर रहे हैं मेरे यानी जॉक्सिस के साथ. मेरी जान से रहो, धड़काते रहो.

0: मैं हूँ आर्टिस्ट। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: bunch of zoos. Going out. Zeus.
1: और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप शो में वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको कुछ दोस्तों के नाम जिन्होंने अपनी मोहब्बत को दिया है अंजाम। जी हाँ, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं अपने व्यूज इमोशंस एंड थॉट्स। समंत हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, समंत सर एक स्टूडेंट हूँ, रेडियो चुनाव अच्छा लगता है और आपको आवन जावन में देखता हूँ, मैं रेडियो चुनार के आसपास ही रहता हूँ, बताओ कहाँ। भैया रेडियो जॉकी हूँ, गूगल मैप नहीं, कैसे बताऊँ कहाँ, इतने सारे इलाके हैं, कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता, बट ये है कि आप कहाँ भी रहते हैं लेकिन हमारे दिल के करीब है। और ये जो आवन जावन में आप नजर रखते हैं ना, कतई मोहल्ले की सीसीटीवी वाली आंटी लगते हैं, तो ऐसा करे जरूर करे, बट नेक्स्ट टाइम जब हम आपको दिखे और आप हमें देख पाए तो आके हमें बताए कि मैं ही हूँ समद हबीबी, समद समद हबीबी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। रानी हमारे साथ जुड़ी है, लिखती है, रानी सर बड़े टाइम के बाद मैच

कर रही हूँ। आज गाने बहुत ही अच्छे चल रहे हैं रेडियो चैनल पर, तो रानी जी गाने जो हैं अच्छे ही चलते हैं, और आपका शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए। और इससे ज़्यादा उर्दू अगर करनी हो तो साहिल मुजफ्फर से कॉन्टेक्ट करें, मैं नहीं बोल पाता उतनी। राल दिल से शुक्रिया, और आप भी जुड़ना चाहते हैं तो 8899904904 इज द नंबर, 8899904904 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक ऐसी जगहें जो आज भी इंसानों को डराती है, ऐसी जगहें जिनके बारे में कहानियां बताई जाती है, ऐसी जगहें जहां पर बताया जाता है कि अगर आप वहां पर गए तो भूत पिशाच आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको डराएंगे। अब पुराने जमाने में जब ऐसा कुछ सुनते थे तो लोग यकीन भी करते थे, लेकिन आज की नई जनरेशन भले ही ये न माने लेकिन विज्ञान और इंसान कुछ ऐसी जगह है जहां पर अचंभित हो जाता है, जहां पर हैरान हो जाता है। ऐसी जगहों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक प्लेसेस दैट स्टिल हॉन्ट। और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन सिटे ऑक्टेव

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jesus. Kon ajo.
1: Jesus.
2: Horse Frequency or the Kitter Can Radio Channel 90.4 Rap em up enjoy karem Star Show. What's up? What's up show me aaj ka topic India's most haunted places. और अगर हम इस लिस्ट को टटोले खंगाले तो सबसे पहला नाम जो आता है दैट्स भांगड़ा फोर्ट राजस्थान, जहां पर बताया जाता है कि इस जगह को कर्स किया गया था 17th सेंचुरी में, जब एक चुड़ैल ने इस जगह को श्राप किया था क्योंकि उसे एक प्रिंसेस ने ठुकराया था और उसके बाद वहां पर ये जो हॉन्टेड कतीदियाँ शुरू हो गई। बात तब की थी लेकिन आज भी मानी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई इस चीज को मानती है और शाम होते ही उनकी तरफ से हिदायत है कि कोई भी इस जगह पर नहीं जा सकता। और ऐसा ही एक और गांव कुलदारा विलेज, जहां पर भी लोगों का जाना माना है। जी हाँ, रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा ये गांव जिसे श्राप मिला था, क्योंकि यहाँ पर 1825 में पूरे के पूरे लोग जो भी यहाँ रहते थे गांव से गायब हो गए और इस जगह को श्राप मिला है कि कोई यहाँ पर बस नहीं सकता। रेडियो चुनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर अगर आप भी इन गतिविधियों का शिकार हुए हैं या आपने भी कभी देखा है ऐसा कुछ, आपने भी अनुभव किया है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। 8888-9904-904 इज द नंबर। और दिल की धड़कन रेडियो चुनौर से डायरेक्ट धड़का।

अरे भूत राजा।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार से वो सब जो हमें अगली पेशकश आई फील गुड आई फील गुड एक ऐसा शो जो हम अब तक पहुंचाते हैं ट्यूसडेज और फ्राइडेज को जस्ट दिस शो दैट्स अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स दैट्स अ बिट एक्साइटिंग बिकॉज इट्स अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक और इस फ्रीक्वेंसी पर जरा सा इंतजार देते रहे प्यार हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार जॉक्स के साथ मुस्तार शो वो सब सुनते रहो धड़काते रहो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
2: So here is what I promised. I welcome you all this beautiful journey. Western music we need. I feel good. Smile like a bandage. I'm Zeus and you're tuned into the hottest frequency of Kashmir Radio Channel 90.4

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी हाँ, शुरू तो हम भी करते हैं और ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है आपको, दिल तो थाम ही लीजिए क्योंकि हमारी गाड़ी चल पड़ी है और इसकी सवारी तो हमारी पूरी वाइबो ड्राइवर है। ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, दिल का प्यार है, मोहब्बत है, जज्बात है, एहसास साथ है और क्या

0: बीट्स ऑन रिपीट योर चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हो ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है. तो सुबह सुबह सुबह और एक्साइटेड भी मैं काफ़ी काफ़ी काफ़ी, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जब हम एक्साइटेड नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी सुबह को लेकर, तो कौन होगा. और हमारा फिर हम कहते हैं कि भाई आज मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में. अब ज़िंदगी में मज़ा तब आएगा जब खट्टा नहीं, सच में हम सही सोचेंगे, मीठी याद है, मीठी सोच, यानी हर चीज़ मीठा होगा. अब खाने वाला मीठा नहीं, बट हम सोच सकते हैं कुछ पॉजिटिव जिससे हमें ऐसा लगेगा कि सच में हमारी ज़िंदगी बेहतरीन से भी बेहतरीन बन सकती है सिर्फ हमारी सही सोच से. अभी आप मुझे बताइए कि आप कैसे अपनी शुरुआत कर रहे हैं सुबह की, क्या थी वो बेहतरीन सी थॉट और क्या है आपके हालात, जज्बात और ख्यालात.
1: मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तू.
0: जी हाँ बिल्कुल, प्यार तो बहुत पहले ही हुआ, लव तो बहुत पहले हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग्स जो सुनने को मिलते हैं ना.

0: Tribo Tribe, फिर वही back to back songs only on hottest frequency of Kashmir Radio to 90.4 FM. ये हर दिल की धड़कन था मेरे दोस्त, हक से दड़ गया.
1: मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब, और कहती

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: देखिए, मेरा भी कहाँ दिल लगता है आपके बगैर, और आप नहीं हो तो ये साथ मुझे काफी अधूरा लगता है, और आपके आने से हर चीज पूरा हो जाता है। सोचना और भी स्टे सारी बातें, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे की बात करें तो स्मूथली ट्रैफिक को अलो किया जा रहा, आप आराम से आ सकते जा सकते हैं जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। बस जो हमारे पास गाइडलाइंस है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दी गई है, उन्हें हमने फॉलो करना है सो दैट हम अपनी जो ट्रैवल है उसे और भी खूबसूरत बना सके। बिकॉज हम स्टक नहीं होना चाहते। अगर हम बात करें स्पेशली जम्मू और कश्मीर नेशनल हाईवे की, तो कई कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स की वजह से कभी डिस्ट्रप्शन आ जाता है, बैड वेदर कंडीशंस के कारण भी हमें कभी कभार रुकना पड़ता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। टू वे ट्रैफिक होता है, कभी वन वे ट्रैफिक होता है, सो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। सो इसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस सबसे आगे है और आप तक जानकारी पहुँचाते हैं। और ज़रूरी, अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, अब सीट बेल्ट लगा के तो आप गाड़ी चला रहे होंगे, क्योंकि हमारी वाइबर ट्राइब काफ़ी ज़्यादा चलाक भी है और अपना ख्याल भी रख रही है, और गलत जगह पे ओवरटेक भी नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉट फेयर हो जाएगा और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा। सो हम वो तो नहीं चाहते। व्हेन वी से वी केयर फॉर यू, वी मीन इट। सो हमारा ख्याल है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई ख्याल है आपका हम तक पहुँचाए, समझाए।
1: 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा।
0: देखिए, 50 करोड़ तो नहीं है, पर जितना भी पैसा है अगर वो फाइन में लग जाए तो काफी दुख होता है भैया जी। वो ना हम चाहते हैं अब ख्याल रखे, अपना कुछ कहना चाहते हैं, फिर से बता रही हूँ 0409 04 9 0 4 WhatsApp कीजिए, शो टू नॉर्वीज का हिस्सा बन जाए।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Diva.
1: Cover online. जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर रवन बुजु खबर विस्तार शांत। क्या चल चल खबर और क्या है ट्रेंडिंग सोशल मीडिया?

तो खबर ऑनलाइन में आज हम बात करें दमाल फोर की जी। हाँ चल कुड़ी चल चल मेरे नाल, तेरा मेरा मलना ही डबल दमाल। देखिए डबल दमाल अभी रिलीज होने जा रही है 10th of July को, एंड इंद्र कुमार की ये मूवी हाईली एंटिसिपेटेड कॉमेडी एडवेंचर स्टार्स अ मैसिव कास्ट और इट्स अ अमेजिंग मूवी। जैसे हमने पहले देखा धमाल काफ़ी कमाल की थी और डबल धमाल भी काफ़ी कमाल था, और वही अगर हम बात करें टोटल धमाल वो भी कमाल की थी। अभी धमाल फोर आने वाली है सो बहुत सारी एक्साइटमेंट है। वही अगर हम स्टार कास्ट की बात करें, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी एंड संजय मिश्रा। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे हमने धमाल में देखा तो काफ़ी कमाल की एक्टिंग रही इसमें इन तमाम एक्टर्स की। वैसे ही टोटल धमाल में और डबल धमाल में भी काफ़ी ज़्यादा अलग हमने देखा, स्टार्स बदलते रहे, लेकिन कुछ ऐसे स्टार जैसे अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी, इनका वो अलग ही लुक। धमाल से जो स्टार्ट हुई मूवी और लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, क्या वही एक्सपेक्टेशंस हम अब भी रख रहे हैं कि जो धमाल फोर आने वाली है वो भी ऐसी होगी, कुछ अलग होगा, क्या कॉमेडी होगी, क्या अलग होगा, क्या हमें अलग देखने को मिलेगा कॉमेडी के फॉर्म में। आज की खबर, सम सुपर एक्साइटेड, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड। देखिए हसाने रुलाने वाले और एक्शन मूवीज तो हम देखते रहते हैं, हम सीख भी ले लेते हैं, लेकिन जब हमें कोई हंसाता है ना वो बहुत अलग चीज़ होती है, और ऐसी मूवीज़ जो है ना जो हमेशा हमारे दिमाग में और जहन में रहती है, और हम तो बस वो कहते हैं ना कि हमारे ज़ुबान पे ही उनके कुछ डायलॉग्स रहते हैं, स्पेशली डबल धमाल या फिर धमाल में इतने सारे डायलॉग्स हैं। सो ज़रूरी है कि ऐसे मूवीज़ का जब आना होता है तो पीपल आर मोर एक्साइटेड, क्योंकि कुछ फ़न हो रहा है, कुछ फ़नी आ रहा है। सो आप मुझे बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या आप धमाल फोर देखने जाएंगे। 8999904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो कैसा बन जाए।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनार बीट्स आप सुन रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM। ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आया है और कल से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है। और ये मुहर्रमुल हराम इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन सिर्फ एक नया साल ही नहीं, नए साल की शुरुआत ही नहीं, ये महीना हमें सब्र, सच्चाई और कुर्बानी का पैगाम देता है। और खास

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: या अली, या अली, या अली।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय, मैं हूँ आरजे जेसूस।
1: हेलो, मैं

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनाव बीट्स और आज शो पे हम बात कर रहे थे मुहर्रम अल हराम के बारे में. मुहर्रम जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है और हमारे लिए एक पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हम अपनी मोहब्बत, अमन, एकता का जो हमारे अंदर वो चीज़ है वो होनी चाहिए. मुहर्रम अल हराम हमें हक, सब्र और कुर्बानी की याद दिलाता है. पर ये चीज़ें सिर्फ आज के लिए नहीं, आगे हमारी ज़िंदगी में हमें याद रहनी चाहिए. जो हमारे लिए इमाम हुसैन ने किया है, या फिर अगर हम देखें तो वो अकेले थे लेकिन वो लड़े और शहादत उनकी कबूल हुई. और हमें भी जो उन्होंने सीख दी है, या फिर अली के जो फरमान है हमारे लिए हज़रत अली के, उन पे हमें अल्लाह ताला ये मौका दे कि हम उन्हीं सीख से आगे चले, उस सीख को आगे लेकर चले. फ़िलहाल के लिए अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, मुहर्रम कल से स्टार्ट होने जा रहा है, आपको कुछ कहना है, किसी तक कोई आपको मैसेज पहुंचानी है, 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं आप.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड की शुरुआत और इस बात की रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए आप भी इंजॉय कर सकते हैं अपना फेवरेट ट्रैक 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड एंड की रिक्वेस्ट है, आप भी अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं 8899904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। बस कुछ ही समय बचा है शो म्यूजिक ऑन डिमांड में, तो जल्दी से शो का हिस्सा बन जाइए और एंजॉय कीजिए अपना फेवरेट ट्रैक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जी हाँ, करेंगे पूरी बात बाकी। तो ये मैं कल ही करने वाली हूँ, 12 से लेकर बराबर 2 बजे तक, इवन कि मैं कल एक्स्ट्रा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगी। बट अभी के लिए बातें तो आपकी हमारी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, बातें ख़त्म नहीं होती, बट टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी असरा आएगी, शो हंगामा, फुल ऑन ड्रामा लेकर आप इंजॉय करेंगे शो हंगामा। मैं जा रही हूँ, और जाते जाते ईशा की रिक्वेस्ट है ये, और बातें तो मैं कल करूँगी आपसे। और मैं चाहती हूँ आप अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: शहर क्या, मैं तो स्टूडियो में आ गई हूँ लेके शो हंगामा आपसे मिलने, आपसे बतियाने
1: जाना क्या बात है।
2: देख
3: शहर में हूँ मैं तेरे,
0: शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ सिर्फ यही मिलता है।
2: धुन थोड़ी सी छूट रही है, फिर से सुन लेना।
0: रिया आप भी फिर से सुन लीजिए कि हंगामा शुरू हो गया और आते आते ही प्ले होता है कुछ क्रेजी, कुछ खास, कुछ तड़कता फड़कता। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स और कुछ ही ट्रैक से बाद और भी बातें होंगी। और सबसे पहले तो हम इसी बारे में बात करते हैं कि भाई फ्रेश क्या ट्रेंडिंग है, क्या लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है। अब देखिए कुछ ही ट्रैक से बाद इस बारे में बात होगी, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक्स में हूँ हंगामा में, बस यूं कहिए और यूं वापस आए।

0: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, वो निभा रही हूँ मैं कि वापस आके मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ्रेश फ्रेश क्या लोग रीपोस्ट कर रहे हैं, किस पर लिप सिंकिंग, डांस रील्स, रील्स और मीम्स बन रहे हैं। और आज है एक ऐसा गाना जो ABCD2 से है, यानी कि एनीबडी कैन डांस 2 से ये गाना अभी ट्रेंड कर रहा है। लोग इस पे इतनी प्यारी रीलें बना रहे हैं, भाई क्या ही बताऊं मैं। और इतनी अच्छी रील्स हैं एंड स्पेशली इस पे एडिटिंग जिस तरीके की जाती है इन वीडियोस पे, दैट इज समथिंग कमेंडेबल। वन पे वन है फ्री, यही हूँ आज भी, बिल्कुल मैं भी यहीं पे हूँ और कल भी होगी, परसों भी होगी, संडे में छुट्टी होती है भाई, बाकी दिन तो आप ही के साथ गुजरते हैं हमारे। 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। एंजॉय कीजिए हैप्पी आवर सॉन्ग फ्रॉम ABCD2।
1: पूछ रहा है मैं कौन है, शुड आई टेल हिम और शो हिम।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन. और अभी वक्त है अपडेट्स का. देखिए, इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट पर अपडेट्स भी जरूरी है. दिस इज द टाइम फॉर रेलवे अपडेट. और आज की अपडेट यही है कि एवरी ट्रेन इज शेड्यूल्ड एज पर द समर टाइम टेबल एंड यू कैन अवेल दैट समर टाइम टेबल रेल वन ऑफिशियल इंडियन ऐप से, इंडियन रेलवे ऐप से. आपको ऑफिशियली जो भी समर टाइम टेबल है वो आपको मिल जाएगा. या अगर आप इन पर्सन किसी स्टेशन पर है, वहाँ पे भी बिल बोर्ड्स लगे होते हैं. एंड इट्स बेटर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर 10-15 मिनट पहले पहुँचे ताकि आपके जो प्लान में कोई डी स्केड्यूल ना हो. मैं हूँ अस्रा सुंदरी, रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, और आज का टॉपिक कुछ खास है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेकअप्स एंड इमोशनल रिकवरी, कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो जो प्यार होता है उनका वो उनसे जुदा हो जाता है। तो आजकल का क्या उस चीज़ से अभी ये जो जनरेशन है इस बारे में क्या सोचती है, जेन जी टर्म्स क्या है, और फिर आप उस ब्रेकअप से इमोशनली रिकवर कैसे करते हैं, या पुराने ज़माने में कैसे रिकवरी होती थी, हर किसी चीज़ के बारे में बात होगी। फिलहाल के लिए इन्जॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स में हूँ, शो है हंगामा में, बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है जी हाँ हर दिल की धड़कन। जैसा कि आज हम ब्रेकअप्स और इमोशनल रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले बात करते हैं कि क्यों होते हैं ब्रेकअप। और आजकल के माइंडसेट के हिसाब से बोलें तो लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जो हमारे पास चीज़ है हम उससे खुश नहीं हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ों से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि आजकल ये रिलेशनशिप्स में भी देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, ये उस इंसान को लगता है। बट जब रियल मार्केट में देखते हैं या हम रियल लाइफ में देखते हैं तो एक्चुअली समझ आता है कि भाई हमारे पास एक नियामत थी जो हमसे छूट गई है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि आई नीड स्पेस, उस वजह से भी ब्रेकअप होता है। यानी कि जब आप इमोशनली इन्वेस्ट ना करना चाहे और सिर्फ उसको नाम दे दें कि भाई मुझे तो स्पेस की ज़रूरत है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। बट कुछ टाइम अकेले रहना और फिर बार बार अकेले रहना और लोगों के साथ प्लान बनाना और अपने पार्टनर को अकेले छोड़ देना, इन सब चीज़ों की वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं। और आजकल की जेन ज़ी दुनिया में बोले तो सबसे जो वियर्ड चीज़ देखी गई है, तो देर आर ओनली एक्सट्रीम्स, जेन ज़ी बिलीव इधर क्या वो जल्दी शादी कर लेते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, बट देर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो भी कमिटमेंट से डरते हैं, बट अटेंशन बड़ा ही प्यारा है। और ब्रेकअप्स में आप माने ना माने, बट ब्रेकअप्स में अभी के टाइम पे सोशल मीडिया कंपेरिजन

भी एक अपना रोल अदा निभाता है, यानी कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि हमें लगता है सोशल मीडिया पे भाई इस कपल ने तो आपस में ये कर लिया और एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, वो भी बहुत महंगे महंगे एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें अपनी रूटीन छोड़ के, बट वो सिर्फ स्क्रीन के लिए है। अपने रूटीन छोड़ना, अपने जॉब को या ऑल्टर करना, या मूवीज से ऑल्टर होकर अपने ब्रेन माइंडसेट को ऑल्टर करके बहुत सारे लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, जिसकी वजह से होते हैं ब्रेकअप्स और जो कोई भी नहीं चाहता। और कहते हैं सबसे ज्यादा जो दुख भरा ब्रेकअप होता है वो एक तरफा प्यार होता है, या वन साइडेड ब्रेकअप जिसे हम कहें। और बहुत सारे टाइप्स के ब्रेकअप्स हैं, जैसे जब दोनों लोग एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो एक शांति तो ज़रूर होती है, बट जब सिर्फ एक इंसान अलग होना चाहता है तो उसमें बहुत दुख होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक गिल्ट बढ़ जाता है उस इंसान में जो छोड़ के जा रहा है, कि मैं इस इंसान को छोड़ के जा रहा हूँ, क्या पता कल को मुझे इससे बेहतर मिले ना मिले, या जिस तरह से ये मुझसे प्यार करता है या करती है, कल को ऐसा प्यार मुझे कहीं और मिलेगा कि नहीं। और बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ किसी ने पर्टिकुलरली ब्रेकअप का नाम लिया नहीं होता, पर धीरे धीरे उसका सेंस ख़त्म होने लगता है। और आजकल के ज़माने की बात करें तो गोस्टिंग इज़ एक और कल्चर की, एक दूसरे को बताओ ही ना, अकाउंटेबिलिटी ही ना लो। अब देखिए बहुत सारे लोग अभी भी ओल्ड स्कूल रोमांस में बिलीव करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू ओल्ड स्कूल रोमांस एंड वन साइडेड रोमांस, हाउ कैन वी मिस ऑन इम्तियाज़ अली'ज़ डायरेक्शंस। आप भी अपनी ब्रेकअप स्टोरी हमसे शेयर कीजिए, 8899-049-04 इज़ द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और आप भी बताइए कि क्या एक तरफा प्यार की कीमत कैसी होती है, और एक तरफा प्यार हसीन होता है या सच में सिर्फ और सिर्फ दुख होता है उसमें। और अगर कभी आपने म्यूचुअली ब्रेकअप किया, जो बहुत कम होता है भाई, बट अगर किया है तो कैसा रहा है वो आपका एक्सपीरियंस। मैं हूँ अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। और आज कुछ खास बातें हो रही हैं, दिल की बात हो रही है, अपनों की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसका हर कोई एक एक्सपीरियंस ज़रूर करता है, और आज प्यार की बात हो रही है। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: अजी वेलकम बैक जी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे आपका जी हाँ शो हंगामा है और आज हम ब्रेकअप्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाय, और इमोशनल रिकवरी भी ज़रूरी है, बट पहले ब्रेकअप्स के बारे में बात की हमने कि किस तरह के ब्रेकअप्स होते हैं, म्यूचुअल हो, वन साइडेड हो, एक तरफा प्यार, एक चुटकी सिंदूर के, नहीं सिंदूर के बारे में बात नहीं कर रहे हम, बट एक और बात है कि

आज कल जो जेंजीज हैं उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेकअप तो नहीं होता पर दिल भी टूट जाता है और ये समझ नहीं आता कि ये किस पैकेज में लिखा हुआ था। यानी कि आज इतने सारे जेंजी टर्म्स हैं दैट आई कैन टेल यू अबाउट जो एक्चुअली पीपल यूज टू डेट नाउडेज और उनका मतलब सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ आज की जेंजी टर्म्स ऐसी हैं जैसे कि अगर सिचुएशनशिप की बात करें कि भाई हम साथ तो हैं पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेंचिंग की बात करें क्या तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एक पार्टनर है तो वो सही है बट एक और बैकअप में हमारे पास है कि अगर हमारे इस रिलेशनशिप में कुछ खराब होता है तो शायद वो मुझे बेहतर प्यार करेगा। इसके अलावा ब्रेड क्रम्बिंग की बात करें तो आजकल बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, या तो विक्टिम होते हैं या तो एक परफॉर्मर होता है। और ब्रेड क्रम्बिंग की बात होती है कि थोड़े से एफर्ट दे के फिर वापस चले जाना और कोई एफर्ट ना देना। उस वजह से एक इंसान परेशान हो जाता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। बेसिकली अगर आज की डेटिंग सिनेरियो की बात करें तो ब्रेकअप हो जाता है बट मालूम नहीं होता कि दिल दुख क्यों रहा है, क्योंकि एक्चुअली कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इतना रेल लगने लगता है बट फिर भी इतना सारा कंफ्यूजन है। और जेंजीज की बात करें तो कमिटमेंट चाहिए बट हम मतलब कमिटमेंट नहीं चाहिए बट अटेंशन ज़रूर चाहिए और इमोशनली वो डीप ओल्ड स्कूल लव भी चाहिए बट हम इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। और आप भी बताइए कि अगर आप जेंजीज में से हैं तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और अगर आप मिलेनियल्स, बूमर्स या जिस भी जेनरेशन से हैं, आपके जमाने के लोग किस तरह प्यार करते थे। Enjoy your back-to-back tracks and I am playing one of my favorite tracks that actually hypes you up. Let's break up from the movie Dare Zindagi. जी हमें तो और आज की जेनरेशन को मनाना भी नहीं आता। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार पर। हमारा काम ही है कि आपको मनाएं, आपको बताएं क्या चल रहा है दुनिया में। सुनते रहिए रेडियो सुनार और बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स का वादा सबसे ज्यादा रेडियो सुनार ही देता है। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

हाय, मैं वसरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। जैसे कि हम ब्रेकअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, और देखिए अगर हमने हंसी मजाक की बात की, आज के ज़माने के बारे में बात की, किस तरह के ब्रेकअप्स होते हैं, म्यूचुअल हो क्या नहीं हो, बट देखिए ब्रेकअप्स हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसको हंसी मजाक में ही लेते हैं, बट देयर इज़ द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट टू, अ डार्क साइड टू इट, दैट इज़ कि हमारी रूटीन खराब हो जाती है एंड इट लुक्स लाइक कि भाई इससे क्या रूटीन खराब होगी, बट जेन्युइनली अगर आप किसी एक इंसान से बात करते हैं, आप अपने दुख सुख उनके साथ शेयर करते हैं, तो जब वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो रूटीन है वो चेंज होने लगती है, उस पे जो उस रूटीन में ढलने में ज़रूरी है कि आपको टाइम लगेगा, एंड ये भी ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, और ज़रूरी ये भी है कि हीलिंग जो होती है किसी ब्रेकअप से, किसी लाइक इमोशनल रिकवरी, किसी अगर ग्रीफ से, किसी दुख से हमें इमोशनली वापस आना है, वो सेम नहीं हो सकता। किसी दिन अच्छा दिन होगा, किसी दिन बुरा दिन होगा, बस बात ये है कि यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। एंड जो क्लोजर की बात होती है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो इस बात से क्या कहना चाहती थी या चाहता था, या वो कुछ लाइक इज ही कमिंग बैक, इज शी कमिंग बैक, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में ज़रूर आती हैं, बट ये क्लोजर हमें खुद को सेल्फ क्रिएटेड देना चाहिए कि कोई इंसान आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, और अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में रहना चाहता है तो दे विल डेफिनेटली बी इन योर लाइफ, और अगर नहीं रह रहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मेन थिंग टू फॉलो। और अगर स्पेसिफिकली हम लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी की बात करें कि जो हमारे रिकवरी के फेजेस होते हैं, सबसे पहले डिनायल में होता है एक इंसान कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस लाइक कुछ देर की लड़ाई है या कुछ देर के बाद वो इंसान वापस आ जाएगा। उसके बाद ये होता है कि हम मेमोरीज के बारे में ऑब्सेस करते हैं, सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, फिर जब हमें वो रियलिटी हिट करती है कि भाई वो इंसान वापस तो नहीं आने वाला है, तो हमारा एक इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो ब्रेकडाउन कितने टाइम तक चली ये इंसान टू इंसान पे डिपेंड करता है, बिकॉज टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। उसके बाद आप अपनी पूरी जो रूटीन है वो नए से बिल्ड करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी में भी चेंजेस आती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी से ब्रेकअप करते हैं, दिस इज़ अ मीम ऑल्सो, कि जब आप किसी से ब्रेकअप करते हैं तो ब्रेकअप के बाद वो इंसान ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है।

0: पाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने आप पर फोकस करने लगते हैं। और फिर फिफ्थ स्टेज डिटैचमेंट का होता है, जहाँ पे आप एक न्यूट्रल बॉन्डिंग पर पहुँच जाते हैं। भले ही प्यार कम हो ना हो, पर ये चीज जरूर होती है कि आप उस इंसान से डिटैच हो गए होते हैं।
1: दिल ना किसी से लगाना,
0: ना ना ना, ये तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया। बट कि मेरा मानना ऐसा है कि अगर प्यार में दिल आपका हारना ही है, आपको मतलब दिल दुख ही सकता है, तो एक प्यार करने के बाद दिल दुखाना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कि कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का कहा हुआ है दिल है मुश्किल में, कि एक तरफा प्यार की जो एक एम्बियंस होती है, एक वाइब होती है, वो डिफरेंट होती है। अब आप बताइए कि आप प्यार के बारे में क्या सोचते हो। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनायर। और अब कुछ खास है यानी कि गेम ऑन। गेम ऑन शुरू हो चुका है यानी कि स्पोर्ट्स की अपडेट, चाहे लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो। और सिर्फ अपडेट्स ही नहीं, कभी कभी हम फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। बस जो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कभी आपने सुने नहीं होते हैं या कभी सुने होते हैं बट उनके बारे में चर्चा नहीं हुई होती है। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। और अब हम बात करेंगे कुछ ही ट्रैक से बात के आज का स्पोर्ट्स का फैक्ट क्या है।

0: देखिए दुनिया तो खेल तमाशा है और खेल कूद के बारे में जो भी अपडेट्स होती हैं वो होती हैं यानी कि गेम ऑन ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम
1: टोन एंड टो रेडियो सुनार 90.4 एफएम गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4
0: वेलकम बैक टू शो हंगामा एंड सेगमेंट गेम ऑन. और जैसा कि मैंने कहा था कि आज एक क्रेजी सा फैक्ट है और आज का फैक्ट इज रिलेटेड टू आवर वुमेन एंड स्पेशली जब हम इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स की बारे में बात करते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिनके बारे में बात नहीं होती है. और आज हम बात करने जा रहे हैं कर्णम मलेश्वरी के बारे में, जो कि करंटली अभी रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर है फीमेल, एंड शी हैज बीन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स. यार कि देख रहे हैं आपकी ओलंपिक्स जैसा मेडल पहली जो इंडियन वुमेन ने जीता था अपने बलबूते पे इन द ईयर ऑफ 2000. एंड जस्ट टू ऐड फॉर द फैक्ट कि इंडिया का वाहिद मेडल जो ओलंपिक्स में जीता गया था 2000 में, दैट वाज बाय हर एंड आई वुड शेयर हर नेम मोर एंड मोर लाउडर, दैट इज कर्णम मलेश्वरी. देखिए ऐसे भी और बहुत सारे नाम हैं जो एक्चुअली हमारे इस देश के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, स्पेशली अगर स्पोर्ट्स की बात करें. और ऐसे ही फैक्ट्स आप तक और लाएंगे, पर आज के यही अपडेट थी. और आप भी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं वास्तव सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. अभी भी कुछ वक्त बाकी है तो जल्दी से जुड़ जाइए, बन जाइए शो का हिस्सा.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बिल्कुल नहीं अजी, हम आपको कैसे बोल सकते हैं. और अगर आज जा रही हूँ कल वापस आऊंगी, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, कुछ ना कुछ मेमोरेबल करते रहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव मेमोरीज, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक बैक एंड से ओ माय गॉड, मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है. और देखिए आप दूसरों को ये कहानी सुनाएंगे. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. और साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: करो हंगामा आजे असरा के साथ
3: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।

Jeremy. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: राहुल,

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
3: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.
0: Dil ko
1: karar aa jaye,
0: jab bhi aaye
1: suhani shaam,
0: dabi yaadein mehak jaye,
1: jab bhi aaye
0: suhani shaam,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

Monica!

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: रात अकेली है।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: किशोर बचाओ, ओ मुर्गे, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा तारा रा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना हन हन हन प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: है।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा लैला, ओए लैला, लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।